0: Essie Quibble is Guyana's.
1: किस बात से डर रहा है यार? एज डिफरेंस. हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है. फिगर उसके पास है, फादर तू है.

0: चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: आज तक शमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये शमा मरने को तैयार है।

नहीं मैं नहीं आ सकता, वो डैड ने मुझे मैनिकॉन्स आज ही दुकान पे पहुंचाने के लिए बोला है। अच्छा मेरा इंतजार कर रही हो, ठीक है कोशिश करता हूँ, आता हूँ।

Yeah, you know what I'm saying? छोड़ना छोड़ना छोड़ना, इनको मैं बताता हूँ, रुक रुक जा कर, रिकॉर्ड कर, चल हाँ।

जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: गुड बॉय बन जाता हूँ
1: yeah.
0: उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।